0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: श्रोतहो नमस्कार, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा. सांजरंगमध्ये मी आरजे कोमल आहे तुमच्या सोबत. आणि मंडळी, आज आहे ईद ए मिलाद. खरं म्हणजे आज महत्वाचा दिवस आहे आणि आज आपल्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांना ईद ए मिलादच्या खूप खूप शुभेच्छा. याच निमित्त आपण गप्पा मारत आहोत आणि आपल्यासोबत आहेत आपले काही श्रोते. नमस्कार.
1: नमस्कार, मी शेख जबीना याज मुकुंदनगर मलाला बालभवन येथे मी सेंटर कोऑर्डिनेटर या पदावर कार्यरत आहे. तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की आज ईद ए मिलादुन नबीचा कार्यक्रम आहे. तर मी आपल्याला सर्वात प्रथम याच्या शुभेच्छा देऊ इच्छिते सर्व नगरकरवासियांना व माझ्या स्नेहालय परिवाराला. आमच्या बालभवनतर्फे ईद ए मिलादुन नबीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता मी तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगते आमच्या बालभवनाबद्दल. हमारे इस बालभवन में ईद ए मिलादुन नबी का प्रोग्राम लिया गया है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को ईद मिलादुन नबी के महत्व, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर उनके द्वारा दिए गए प्रेम और भाईचारे और मानवता के संदेश से परिचित करना था. कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थिनियों को ईद ए मिलादुन नबी के बारे में जानकारी देकर की गई. इस अवसर पर रजिया मैडम और हमारे बाल भवन के समरीन सैयद मैडम, इन्होंने विद्यार्थियों को इसके बारे में मालूमात दी. उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेम, सद्भावना, एकता, आपसी सम्मान और जरूरतमंदों की सहायता करने का संदेश दिया. इसी कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थिनियों ने भी विशेष उत्साह देखने को हमें मिला. कुछ विद्यार्थियों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की खुशी में नाच शरीफ प्रस्तुत की. विद्यार्थियों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ नाच शरीफ का गायन किया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय और आनंदमय हो गया था. अन्य विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्ण सहभागिता में करते हुए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीवन में एक ही मकसद और एक ही संकल्प किया था कि आपस में बैर मत रखना, आपस में भेदभाव मत करना, हम सबको भाई बन के, बहन बन के इस दुनिया में रहना है. जो भी एक दूसरे के लिए जो भी अपने दिन में जो भी रूढ़ है, जो भी मतलब मतभेद है, इसको खत्म करना है और एकता के अंदर हम सबको जीना है. इसी तरह हमारे बाल भवन की बच्चियों को हमने खाऊ का भी वाकिफ किया था. जिस तरह से हमारे आप देखते हो कि जैसे भी ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस के अंदर लोग तरह तरह के मिठाइयां, तरह तरह के पकवान बनाकर लोगों को तकसीम करते हैं, ताकि वो अपनी खुशी जाहिर करने का वो एक अपना अपना तरीका होता है. तो इसी तरह बाल भवन में भी हमने बच्चों को बिस्किट का वाटप किया और बच्चों को भी बहुत वो बिस्किट लेने के बाद में प्रसन्नता हुई और उनको भी बहुत खुशी मिली.
2: आपको धन्यवाद. बाल भवन के सभी बच्चों को ईद ए मिलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: थैंक यू मैम. आपको भी.
2: आप कोई गाना सुनना चाहोगे?
1: ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर कोई नाच शरीफ जो होती है तो वो सुना दीजिए.
0: श्रोते हो, आज आहे ईद ए मिलाद आणि त्याचबद्दल आपण गप्पा मारतो आहोत. आणि पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांना ईद ए मिलादच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता आपल्यासोबत होत्या आपल्या स्नेहालय संस्थेतील जे बालभवन आहे त्या बालभवनातील जबीना शेख, आणि त्यांनी देखील खूप छान गप्पा आपल्याशी मारल्यात. आता ऐकूयात त्यांनी सांगितलेलं नात शरीफ हे गीत. आणि मंडळी, आपण अशाच गप्पा मारणार आहोत. ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज.

परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। धर्म सभा के मंच पर विराजमान महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन श्री महासाम के चरणों में हम सभी की श्रद्धा पूर्वक वंदन। स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री मरासा विदुषी महासती वृंद नौ तत्व के रहस्य और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग सीखने के लिए निरंतर जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष इन नौ तत्व है। आश्रम निर्जरा संवर और बंध है, ये चारों निरंतर जारी है। ये चारों जो जारी है इसमें सबसे बड़ा रोल किसी का है तो जीव तत्व का है, आपका है, सोल का है। कौन सा आश्रम होना, कौन सा समर होना, कौन सी निर्जरा होनी, कौन सा बंद होना, इसका डिसीजन लेने का है। इसको होने देना कि नहीं होने देना, कैसे करना, ये पूरा यदि निर्णय का सामर्थ्य किसी के पास है तो आपके पास है। और इस सामर्थ्य को, आपके निर्णय को इंप्लीमेंट करने के लिए, साकार करने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं अजीव तत्व है। वो जड़ है, क्या है वो जड़ है, उसको अक्ल नहीं है, उसको अक्ल नहीं, माइक को अक्ल नहीं है। वैसे अजीव की पहचान क्या है, उसको अक्ल नहीं है, उसको समझ नहीं है और उसको कोई गोल नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जिसको अक्ल है, जिसको समझ है, जो महसूस कर सकता है और जिसके पास गोल है, होता है, हो सकता है, वो जीव है। और जैसा उसका गोल होगा, जैसा उसका लक्ष्य होगा, जैसा उसका ध्येय होगा, जैसा उसका ड्रीम होगा, वैसा ही उसका आश्रम संवर निर्जरा और बंद होगा। बाकी सारे संयोग, अजीव का संयोग, जीवों का संयोग जुड़ जाता है। बस निर्णय किसका होना चाहिए, जीव का निर्णय होना चाहिए। मैंने प्रवाह में बहना है, मैंने फ्लो में चला जाना है या मैंने फ्लो से बाहर निकलना है, ये निर्णय फ्लो का नहीं है, ये निर्णय आपका है, मेरा है। घटना क्या घटती है, इंसिडेंस क्या होता है, इसका मूल्य जीरो है, इसका मूल्य जीरो है। उस इंसिडेंस का आप क्या वैल्यूएशन करते हैं, उस घटना का आप क्या मूल्यांकन करते हैं, उससे आपकी लाइफ बनती है, घटनाओं से लाइफ बनती नहीं है। क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या होगा ये महत्वपूर्ण नहीं, तो जो हुआ है, जो होगा, जो हुआ है उसका मैंने क्या मूल्यांकन किया, उसकी मैंने कैसी कीमत करी, उसकी मैंने वैल्यू क्या करी,
वो इंपॉर्टेंट है, और जो वैल्यूएशन नहीं करता है, जो वैल्यूएशन नहीं करता है वो अजीब है। डायमंड अपनी कीमत नहीं करता है, मकान अपनी कीमत नहीं करता है, कोई पदार्थ अपनी कीमत नहीं करता है, उसकी कीमत कौन करता है? आप और मैं। उसकी कोई कीमत नहीं। आप कीमत करते तो कीमत है, आप कीमत नहीं करते तो कीमत नहीं है। कैसी कीमत करते हो ये महत्वपूर्ण है। कुछ दुर्योधन बनकर के कीमत करते हैं, कुछ कर्ण बनकर के कीमत करते हैं, कुछ द्रोणाचार्य बनकर के कीमत करते हैं, कुछ भीम बनकर के कीमत करते हैं, कोई अर्जुन बनकर के कीमत करता है, कोई नकुल बनकर के कीमत करता है, कोई सहदेव बनकर के कीमत करता है, कोई धर्मराज बनकर के कीमत करता है, कोई द्रौपदी बनकर कीमत करता है, कोई गांधारी बनकर के कीमत करता है। और जैसी वो कीमत करते हैं वैसी उनकी लाइफ चलती है। गांधारी की मन के खिलाफ, गांधारी के मन के खिलाफ, उसके परिवार के भावना के खिलाफ, केवल कुरु वंश की पावर के कारण से गांधारी की शादी धृतराष्ट्र के साथ हुई, बराबर है ना? धृतराष्ट्र के शादी होने के साथ गांधारी ने जो उसका मूल्यांकन किया, गांधारी ने जो उस शादी की कीमत करी कि धृतराष्ट्र के साथ शादी है, धृतराष्ट्र कुछ देखता नहीं, मैं भी कुछ देखूंगी नहीं, ये उसका डिसीजन हुआ। मैं सोचता हूं उसकी जगह पर मैना सुंदरी होती तो क्या डिसीजन करती, उसकी जगह पर कुंती होती तो क्या डिसीजन करती, उसकी जगह पर जयंती श्राविका होती तो क्या डिसीजन करती, उसकी जगह पर राजुल होती तो क्या डिसीजन करती। यदि गांधारी ने पट्टी बांधने का निर्णय लेने के बजाय दूसरा निर्णय लिया होता है कि धृतराष्ट्र को दिखता नहीं है, मैं उसकी आंख बनाऊंगी, अंधे के साथ अंधा होना कि अंधे की आंख बनकर के जीना, बोलते चल जाइए, अंधे के साथ अंधा होना कि अंधे के अंधे की आंख बन जाना, आप क्या होते हो? आप क्या होते हो? आप गांधारी बनते हो कि कुंती बनते हो? Who are you? What is your decision? वनवास पांडवों को जाना था, वनवास पांडवों को जाना था, द्रौपदी का वनवास नहीं था। पांडवों की दूसरी भी पत्नियां थी, द्रौपदी के अलावा पर्सनल पत्नियां भी थी, और सारे पत्नियों के पीहर वाले, द्रौपदी के भी पीहर वाले, जिस समय पांडव के वनवास के दिन की शुरुआत हो रही थी उस दिन सारे पहुंचे थे पांडवों को विदा देने के लिए और अपने बेटे को पीहर ले जाने के लिए। बाकी सारी पत्नियां अपने पीहर चले गई, द्रौपदी को भी दुष्टधमन ने कहा, द्रौपदी ने कहा,
तू भी चल, वनवास उनका है तेरा नहीं। और कहीं पीहर की बात तो मान लेती बाकी पत्नियों के समान, बाकी रानियों के समान, तो पांडव जो हुए वो हो पाते क्या? जो जो वनवास में पांडवों के डेवलपमेंट हुई, वो वैसी होती कहती द्रौपदी साथ में नहीं रहती तो। द्रौपदी का निर्णय पांडव ने भी कहा होगा उसको, ये सब जा रहे तू भी जा, और उसका जवाब था कि नहीं, मैं चले गई तो तुम संकल्प को भूल जाओगे कि तुम्हें दुशासन का बदला लेना, तुम भूल जाओगे, मैं तुम्हारे आंखों के सामने रहूंगी और बिना श्रृंगार करे रहूंगी, मैं बालों का श्रृंगार नहीं करूंगी। जब तक दुशासन को पनिशमेंट नहीं होती है तब तक मैं बालों का श्रृंगार नहीं करूंगी और ऐसे ही तुम्हारे सामने रहूंगी। यदि द्रौपदी का यह निर्णय नहीं होता है तो अगला इतिहास वैसा हो सकता था। निर्णय क्या करना है, डिसीजन क्या करना है, सिचुएशन का मूल्य है या डिसीजन का मूल्य है? मैंने कुछ पूछा है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट या डिसीजन इंपॉर्टेंट? अभी तो बड़े सयाने बन करके जवाब दिया है, ऐसा ही सयानापन आपका 365 दिन 24 आवर्स बना रहे, ये मेरी मंगल कामना है कि परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, निर्णय महत्वपूर्ण है। परिस्थिति के आधार पर नहीं, परिस्थिति का क्या होना है। ऐसे भी सयाने देखे, ऐसे भी सयाने देखे कि जिनको बददुआ मिली लेकिन उन्होंने उसको दुआ बना करके बताया। ऐसे भी सयाने हैं जिन्हें बददुआ मिली लेकिन बददुआ को उन्होंने दुआ बनाया, और ऐसे भी नादान हैं जिन्हें मिली दुआ थी और दुआ को उन्होंने बददुआ बना दिया। कई कई को वरदान मिले थे कि शाप मिले थे? वरदान मिले थे, स्पेशल राइट जो दूसरे किसी रानियों के पास नहीं था, वीटो पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। वरदान कहते किसको है? इसी को कहते हैं। उसने उस वरदान को बद्दुआ बनाया या वरदान बनाया है, स्वयं की तरफ देखते चले जाना है कि मैं क्या बनाता हूं मेरी जिंदगी में। मैं क्या कर रहा हूं? वनवास मिलना ये दुआ है कि बद्दुआ है? वनवास मिलना और उस समय मिलना जिस समय राज्याभिषेक होने वाला है, उस समय में किसी को वनवास जाने के लिए मजबूर होना, ये सौभाग्य की दुर्भाग्य है। हेलो, ठाकुर नहीं पूछ रही हूं मैं जनरल पूछ रही हूं, ये दुर्भाग्य। राम ने उस दुर्भाग्य को क्या बनाया? सौभाग्य बनाए। आप क्या बनाओगे? आप किस में शक्ति लगाओगे? लड़ने में, झगड़ने में
क्लेम करने में, ब्लेम करने में, रोने में, धोने में, सुसाइड करने में। या चेंज करने में। यू हैव ए राइट। आप शिकार भी हो सकते हो, आप शिकारी भी हो सकते हो। हेलो, आप शिकार भी हो सकते हो और आप शिकारी भी हो सकते हो। आप क्या बन करके जीते हो? आप परिस्थिति के शिकार होते हो कि परिस्थिति के शिकारी बनते हो? ये नौ तत्व की चर्चा इसलिए चल रही है कि बी विनर, बी ग्रेट, बी सुपर, बी पावरफुल, बी ऑलवेज विनर। I have a right. I have a right. और जो अपने इस अधिकार का उपयोग करता है वो आत्मा सम्यक दृष्टि होती है। और जो इस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे धृतराष्ट्र होते हैं, वे दुर्योधन होते हैं, वे दुशासन होते हैं, वे रावण होते हैं, वे कंस होते हैं, वे हिटलर बनते, वे टेररिस्ट बनते, वे बलात्कारी बनते, वे जुलूम करने वाले बनते, वे अन्यायी बनते। जो ये डिसीजन नहीं कर पाते, मैक्सिमम जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, एक सेंटेंस आप बार बार बोलते हो, मैं कई कर सकू, परिस्थिति जोशी थी, मारा कई हाथ में, मारा कई हाथ में, मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस। व्हाट यू से, क्या बोलते हो आप? हेल्पलेस, होपलेस। जीव कभी भी हेल्पलेस नहीं होता है, जीव कभी भी होपलेस नहीं होता है। माइक इज हेल्पलेस, होपलेस। माइक को कोई होप है? और जीव जिस समय स्वयं को हेल्पलेस महसूस करता है, होपलेस महसूस करता है, वो जीव होकर के भी जड़ जैसा जीवन जीता है। एक एक सेंटेंस पर एक एक दिन का प्रवचन हो सकता है। व्यक्ति जिस समय हेल्पलेस और होपलेस बनकर के जीवन जीता है उस समय वो जड़ जैसा, पदार्थ जैसा, शिकार जैसा, बलि का बकरा बनकर के जीता है। बहुत पुरानी बात है लेकिन मैं भुलानी हूं। लंदन की बात है, लंदन की बात है। उस समय इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, गाय को शेल्टर होम ले जा रहे थे कत्ल करने के लिए, और बिल्कुल उसमें बंद थी वो, फिर खुले में तो ले जाते नहीं गाय। मेरे तीर्थंकर महावीर कहते हैं तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, पशु भी सम्यक दृष्टि हो सकता है,
और जो सम्यक दृष्टि बनता है वो कभी परिस्थिति का शिकार होता नहीं है। द काउ इज पुइट, निशाने जा रहा है, रोड पर से जा रही है, घाट जा रही है, और उसने डोर को धक्के मारने शुरू कर दिए। ये बात है 92-93 के आसपास की। उसने गाड़ी को, दरवाजे को धक्के मारने शुरू कर दिए। वो बहुत धक्के मार रही थी, गाड़ी बचड़े जा रही थी, तो ड्राइवर को चलाने में दिक्कत जा रही थी, इसलिए वो सीट से उतरा है और गाय को कंट्रोल करने के लिए दरवाजा खोला और वो संभल पाए। उसके पहले गाय तो जंप लगा करके भाग गई। एक गाय भी बलि का बकरा बनने से इनकार कर सकती है। एक गाय में काऊ, अरे यदि वो इनकार करती तो उसको कोई कत्ल नहीं कर सकता है। और तो कहते हैं मारा कहीं हाथ में, हेलो जल्दी से बोलो, किस किसने वाक्य नहीं बोला आज दिन तक, मारा कहीं हाथ में कोनी। मैं तो पक्का नावरो मालिक हूं, हेलो बोलो जी, बोलो कि नहीं बोलो, ये क्या है? ये मिथ्यात्वी है। ये कौन है? मिथ्यात्वी है जो स्वयं के सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करता है, जो स्वयं की क्षमता को इनकार करता है, और जो स्वयं की क्षमता को स्वीकार करता है वो सम्यत्वी है। ये नौ तत्व की चर्चा इसलिए चल रही है, अनादि काल से हमारी आत्मा धृतराष्ट्र बनकर के, दुर्योधन बनकर के, दुशासन बनकर के, रावण बनकर के, कंस बनकर के, अत्याचारी बनकर के, हिंसक बनकर के, हेल्पलेस और होपलेस बनकर के जीते रही है। यह मनुष्य जीवन बहुत बहुत बहुत परिश्रम किया है मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए। ये गिफ्ट में मिला हुआ नहीं है, ये किसी तीर्थंकर ने या किसी राम ने या किसी विष्णु ने या किसी शिव ने या किसी महादेव ने या किसी ब्रह्मा ने या किसी खुदा ने या किसी गॉड ने तुम्हें गिफ्ट नहीं किया भाई। लंबे एफर्ट्स लगाए इस शरीर को, मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए नोइंगली अननोइंगली लंबे एफर्ट्स लगाए। ये एक्सीडेंटली नहीं मिला है, बहुत एफर्ट्स लगाए और आपने लगाए हुए एफर्ट्स का जो रिजल्ट लेता है वो सम्यत्वी है, और आपने एफर्ट जो वेस्टेज होने देता है वो मिथ्यात्वी है। जो एफर्ट्स के बल पर दिवाली मनाता है वो सम्यत्वी है, और एफर्ट्स लगाने के बाद भी जिसका दिवाला निकलता है वो मिथ्यात्वी है। क्या करना है? दिवाली करनी कि दिवाला निकालना है? बहुत दिनों के बाद सवाल पूछ रहा हूं आज, पिछले 3-4 दिन तो मैंने आपको कभी सवाल पूछा नहीं। क्या करना है, दिवाली या दिवाला? दीवानी किसकी?
बाहर दिया जला करके कि अपनी आत्मा को ही दिया बना करके। यस, मैं स्वयं का दिया जलाऊंगा, दूसरा का भी दिया जलाऊंगा, मैं किसी का दिया बुझने नहीं दूंगा। ये कौन सोच सकता है, तो उसको सम्यत्वी कहते हैं। अपसारा हो, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष, इनमें लीडर कोई है, ड्राइवर कोई है, पीएम कोई है, तो कौन है? जीव। अब ये जीव मनमोहन सिंह बनकर के जीता है कि नरेंद्र मोदी बनकर के जीता है, ये जीव का निर्णय है। हेलो, थाने समझ में आ जाए, इसे एग्जांपल दिया भाई। चेयर तो वही है, हर पंत प्रधान के चेयर को वही राइट है। कोई नरेंद्र मोदी ने कोई बिल पास कर करके स्पेशल राइट नहीं लिए। जितने राइट नरेंद्र मोदी के पास है, उतने राइट मनमोहन सिंह के पास भी थे।

वो चलाता चलाता खड़े थे तो भी सरदार मनमोहन सिंह तो नहीं बन गया। बोलेंगे तो यहां पर कोई सजा देने वाला नहीं। और निश्चित रूप से मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि आपका घर वाला आपके पड़ोस में बैठा हुआ नहीं है, इसलिए आप बोलोगे तो घर जाकर के पूछेगा भी नहीं आपको कि आप क्या बोले वहां पर, यानी पूरा पूरा अवैधान है यहां पर। बिल्कुल निर्भय होकर के बोल सकते हो। और जो अपने जिंदगी का नरेंद्र मोदी होता है वो सम्यति होता है। जो अपने निर्णय करने का अधिकार छोड़ देता है वो मिथ्यात्वी है, और जो अपने निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखता है। भूख लगी है, भूख लगी है, पर भोजन करना कि नहीं करना ये भूख का निर्णय नहीं है, ये मेरा निर्णय है। हेलो, जिन्होंने अठाई करी उनको भूख नहीं लगी क्या? जो मांस खमन करे उनको भूख नहीं लगती क्या? पर भूख लगने के बाद खाना कि नहीं खाना ये निर्णय शरीर का है या शरीर में जो आत्मा है उसका है? बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। किसका है, किसके? आपके कि मेरे? जरा देख लेना। जिस दिन तुम्हें निर्णय करोगे ना कि भूख लगने के बाद खाना कि नहीं खाना और कितना खाना, जितना खिलाए उतना खाना, कि जितना खाना है उतना खाना, प्रेम से खाना कि नफरत से खाना, मोबाइल देखते हुए खाना कि आहार के तरह देखकर खाना, ये निर्णय जिस दिन करोगे उस दिन तुम नरेंद्र मोदी बन जाओगे। जब तक तुम कहोगे नहीं फेवरेट डिश आवे तो मैं मस्ती से खाऊं, अन फेवरेट डिश आई तो मैं पीछे मुंडो उतारने खाऊं, तब तक थे सरदार मनमोहन सिंह। आप बताओ कौन कौन थाली पर पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी रहता है? अपने से बढ़िया साड़ी अपने सहेली को देख करके किसके किसके अंदर में आग नहीं लगती है? कहीं किसी के मोबाइल पर वो कहीं घूमने के लिए गए हैं और वहां का मस्त सीन आ जाए और वो सीन देख करके जिसका मूड आफणी होता है, ऐसी बेने कितनी है? हेलो, नहीं मैं नहीं पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा थे, भागो मत, है ना। और जिनका जिनका मूड ऑफ होता है वो सीन देख करके, वो सरदार मनमोहन सिंह है कि नरेंद्र मोदी है? नर साहब मैं तो सम्यक देता हूं, आर तो समझो तो कि तीर्थंकर देव है, गुरुदेव गुरु है और जैन धर्म है, ये तीन धारणा कर ली, सम्यक भी हो गया, ये कठिन ही जा रहे थे। अब कल उन्होंने मुझे बोलने के लिए मना किया, इसलिए बोल नहीं रहा हूं, उनका नाम लेकर के नहीं बोल रहा हूं। कल एक क्लास शुरू हुआ, कल के दिन ही था, डोंट वरी, नाम नहीं लूंगा कभी भी, आपको प्रॉमिस किया, नाम नहीं लूंगा।

और उन्होंने कुछ पहले सीखा हुआ था। मैंने उसमें के दो वाक्य बोले, मैंने कहा इसका अर्थ बताओ। और फिर आखिरकार में उन्होंने कहा कि भाई साहब बेसिक जैनिज्म सिखाना शुरू करो। अब मैंने सोचा जब इनको ही बेसिक जैनिज्म पता नहीं तो इनके बेटों को तो बेटे को तो कोई पता चलने का कारण है, बराबर है। मैंने क्यों नौ तत्व के व्याख्यान शुरू करें। और धन्यवाद देता हूं आपको, ना गीत गाता हूं ना जोक सुनाता हूं ना स्टोरी, फिर भी तुम आ रहे हो, धन्यवाद देता नहीं है ना, धन्यवाद देता नहीं। नौ तत्व के लिए तुम नौ तत्व को समझने के लिए आ रहे हो, इसकी मैं बहुत खुशी मनाता हूं। आप भी मनाते कि नहीं मनाते मुझे पता नहीं, मनाते हैं क्या काहे के आने के या नौ तत्व समझने के? तो आज पक्की खुशी बनाओ छो कि मैं सरदार मनमोहन सिंह बनकर के नहीं रहूंगा। डिसीजन हेलो स्वयं का, मैं हेल्पलेस, मैं होपलेस, बोलो बोलो फटाफट बोलो, हेल्पलेस होपलेस पक्का पक्का। बस अगला एक छोटा सा रेफरेंस समझ लो, आपके साथ आपके तीर्थंकर परमात्मा है कि नहीं है, बोलो ना जोर से। आपके गुरुदेव आपके साथ है कि नहीं है? और जिस समय तुम ये महसूस करते हो आई एम हेल्पलेस आई एम होपलेस, उस समय आप अपने तीर्थंकर का गुरुदेव का सम्मान करते हो कि अपमान करते हो? बोले तो कोई अपमान करना चाहिए क्या? मैक्सिमम हम आशा तो ना अपने गुरु की और तीर्थंकर की करते हैं।

मैक्सिमम आशा तो हम किनकी करते हैं? गुरु की और तीर्थंकर परमात्मा के करते हैं, उनके रहते हुए स्वयं को हेल्पलेस और होपलेस फील करते हैं। मेरी बात अभी भी तुम्हारे अंदर में नहीं पहुंची हो तो तुम्हारे रहते हुए, बाप के जिंदा रहते हुए, बेटा स्वयं को अनाथ समझे तो बाप का सम्मान है कि अपमान है? और आपके जिंदा रहते हुए बेटा और किसी को बाप बनाए, अच्छा लगेगा ना? नहीं ना, नहीं ना, पक्का नहीं ना। एक बार आपके मुंह से खुलकर सुनना चाहता हूं, नहीं ना। तुम्हारा बेटा ही किसी का घर जवाई बनना चाहे तो नहीं, श्रीमंत घर है, उठो घनो सपोर्ट मिल जाएगा थाने। हाँ यस, है ना। तो तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव होते हुए जो व्यक्ति ये तय करता है कि मैं कभी भी मजबूर नहीं होऊंगा, ये अर्थ ध्यान रो ध्यान शुरू कहां से होता है? जिस समय तुम हेल्पलेस और होपलेस स्वयं को फील करते हो उस समय अर्थ ध्यान रो ध्यान शुरू होता है। जल्दी से तय करो कि मेरे पास अरिहंत का शरणा है, सिद्ध का शरणा है, साधु का शरणा है, धर्म का शरणा है, मैं कभी भी हेल्पलेस और होपलेस। ये जो जीव तय करता है वो सम्यत्वी है, और जो कहता कि मैं तो कहे क्यों मारा साहब, कोई को नहीं हो मारो, बोलो लाठो आगे, अरे कोई रहे या ना रहे, तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव आपके साथ हमेशा है। यस और नो, जोर से बोलो ना, यस है ना। तो मैं मंगल पाठ तो दे रहा हूं, और मंगल पाठ के बाद जिनको समय हो तरुण मोदी का भजन है उसको सुनने के लिए रुकते हैं, है ना। चलो हरि मंगलम, मंगल पाठ, मंगल पाठ गुरुदेव।

0: तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो किसने मचाया ये शोर? कौन है, कौन है, कौन है भाई?
1: अरे ये तो पर्दा है।

0: उधर है,
1: ऊपर है,
0: नीचे है,
1: कहाँ है,
0: यहाँ है।
2: नमस्कार नगरकर, मी रामदास फुटाणे। आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
2: नमस्कार नगरकर, मी सावनी रवींद्र, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।